0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: इबाया गश्वानी मुगुक्चुंग रेडियो मबांग थनदा खुमिनत पुंगवा थोंगतन खलमी आसलोक थनथांग लोकल टैलेंट सुनुंग थनसगर आशेर मजुंग पबानुंग इपोट आचांगा खनखा अनबास नुकी थांग आंगाशीचे